0: कोई मीठी बातें नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है।
1: वेरी गुड। नंबर है सराज दा 4374317 5 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
0: अभी तक कोई चेंज नहीं है, बट यस हर दो साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है एडुकेशन में. तो अगर आप आज एनरोल करते हैं आपको पूरा फंडिंग आएगा, मतलब अगर हमने आपको 1.5 लाख 2 लाख का असेसमेंट दिया है आपको उतना ही आएगा. बट यस अगर आप अब नेक्स्ट पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट का होना है अगस्त 2028 में, तो अगर आप 3-4 महीने बाद आएंगे तो आपकी जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट से आपके खाते में डायरेक्ट आनी है उसमें शायद थोड़ी सी कम आए ज्यादा आए, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट पॉलिसी जो अगस्त 2028 में आएगी. तो पीछे ना रहिए, जो लोग सेकंड कोर्स चूज करना चाहते हैं हमारे पास आइए, फीस सबसे कम है, ऑनलाइन कोर्सेज है, एग्जाम्स नहीं है, और मतलब कॉलेज की फीस भी सबसे कम है. तो मतलब ज्यादा पैसा हमारी जेब में नहीं, आपकी आपकी आपकी जेब में.
1: नंबर एक क्विक है, सॉरी सराज, नंबर है सराज द 4372643175 4374 4372643175. कॉल करो, लोन की जानकारी लो, 0% से लोन मिल रहा 4372643175. सराज बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू जी टाइम के लिए.
1: वेरी गुड. ओके नवी जी, सारे मैसेज देते. ओके ओके ओके, आ भी देता हो फ्रेश फूड सेंटर. वाह भी वाह, फ्रेश फूड सेंटर तक जाओगे ग्रोसरी कर, इन्नी फ्रेश, इन्नी टॉप दी क्वालिटी. कैलडन दा टॉप दा ग्रोसरी स्टोर 12570 कैनेडी रोड, फ्रेश फूड सेंटर ते तुसी जरूर पहुंचो. फ्रेश फूड सेंटर. एक मैं नाल दी नाल तुहानू फ्रेश एयर डक्ट क्लीनिंग दा भी नंबर दवां. तुसी डक्ट क्लीनिंग हजे भी नहीं कराई, इन्नी डिले ना करे करो यार, हुण तो बड़ा कुछ हो जाना सीगा. सो फ्रेश एयर डक्ट क्लीनिंग 4376887750. थोड़े डक्ट्स, थोड़े वेंट्स जड़े ने, हुण एसी चलिया पूरी समर, राइट, सो इन्नी डस्ट है वेंट्स डक्ट्स दे विच, जदों कैमरा पाके तुहानूं दिखाउणगे तुसीं आप कहोगे यार ये भाई तां बड़ी गलत गल है. सो तुसीं जरूर डक्ट क्लीनिंग कराओ 4376887750 4376887750 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਕਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਐਂਡ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

कोई छोटा मोटा हाल 100-125 आदमियां दे लई चाहिदा है ते लाइट साउंड डीजे वगैरह नाल सजया सवरिया तुहानू हाल मिल सकदा है 100 to 125 गड्डियां दी खुली डुली पार्किंग है स्ट्रीट फूड इन्हां दा एंजॉय करो गोल गप्पे टिक्कियां पल्ले डोसे गर्मा गर्म देसी घ्यो दियां जलेबियां घर दे विच कोई विआह शादी है विआह दी भाजी तुसीं बनाउणी है तुहानू

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1479-1478 रॉयल ऑटो सेंटर। चलो सुनते हैं जी ट्यून चल रही थी क्योंकि कई बार होंगे कि तुम कह दें नवी यार ट्यून चलाती गाना चलाया नहीं सवाल।

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नाउ एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
1: 647-706-6640-647-706-6840।
2: ओए ट्रक कारा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगा दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533 ते
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: कनाडा विच प्योर पंजाबी खानिया अते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
6: डाइनिंग टेक आउट केटरिंग लाइव ट्रक ल्याके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज दिंदे ने।
4: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलियां मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा।

0: ट्रक कादा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करां
1: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पोंटो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैक्सन
3: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
3: 905-459-5533
1: 905-459-5533
3: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट

मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंतना कोए करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हां तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते।

0: 7998877 थैंक यू जी।
1: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नूं कॉन्टैक्ट करो। तुहाडे कोल AZ लाइसेंस होना चाहिदा है, तुहाडा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कॉन्टैक्ट लई नंबर है 6472927557 6472927557। जेकर तुसी अपने ट्रकां दा ऑयल चेंज कराना चाहुंदे हो जां कोई लीकेज डैमेज ठीक करानी है ते ट्रकां नूं वॉश वी कराना चाहुंदे हो तां ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश 24/7 सर्विस प्रोवाइड करदे हन। इत्थे कैमरे लगे हुए हन जिस करके ट्रकां दे चोरी होण दा कोई खतरा नहीं है। साल दे 365 दिन तुहाडी सेवा विच हाजिर ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश 905-452-9955 905-452-9955। जेकर थोड़ी एज 40 साल तो घट है ते अगले 20 साल तुसी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दा कॉम्बो प्लान लेना चाहुंदे हो तां $99 ले सकदे हो। ज्यादा जानकारी लई तुसी मैनूं कॉल कर सकदे हो 6477563340 6477652340।
2: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मॉडल की थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा दो में लाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा दो में लाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
2: ए टू जी किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर दे हन लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
3: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्कार
4: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जी किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट्स

0: गुड मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तो आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरों ना जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर भी तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। सुखी नेजर साहब आउणगे। अज सूरज सिंह 649 ते आया, 741 ते चले जाणा। मामा चांस्यों 3:32 सवेरे आएगा ते कल नूं शाम नूं 638 ते जाणा है। अज दा तापमान 26 डिग्री, मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा। कल नूं झखड़ झोले थंडरस्टॉर्म नेरी नूरी काफी कुछ आएगा। तापमान 27 डिग्री। थर्सडे नूं सूरज चमकदा रहेगा 25 डिग्री। फ्राइडे सूरज चमकेगा 24 डिग्री। सैटरडे सूरज चमकदा रहेगा 27 डिग्री दे अड़गर तापमान होगा। और संडे नूं 28 डिग्री तापमान होगा। कल ब्लू जे वाले 6-5 दे फर्क ना हारे जी। उम्मीद करते हैं तुहाडा जिहड़ा लोंग वीकेंड अच्छा रहा होगा। काफी लोग बाहर अंदर गए होने, पिकनिकां कीतियां होनियां, इकट्ठे हुए फैमिलियां इकट्ठे हुए होने। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। खबर आ रही है ईरान ने साउथ कोरिया नूं आख्या, गल सुनो ओए, स्टेट ऑफ हर मूच वाला दखलअंदाजी ना करो, नहीं जानते नहीं असीं ईरान हुंदे आ। अज बैक टू स्कूल, बच्चे स्कूल गए आ, छोटे बच्चे वड्डे बच्चे सारे स्कूल गए आ वापस। सो इहदे नाल जिहड़ी लोकल सड़कां ने शाम नूं जदों बच्चां ने आउणा जां सवेरे जाणा उदों आवाजाई थोड़ी वध जांदी आ, स्कूल बसां आ जांदियां, बच्चे भज्जे फिरदे आ। सो आपदियां गड्डियां थोड़ा ध्यान नाल चलायो, खास करके स्कूल जोन दे विच। और जदों बस फ्लैशिंग लाइट लाउंदे आ उदों गड्डी जरूर रोक लिया करो। और 2015 तों लैके हुण तईं जिहड़ी सप्लाई है बच्चों की वह 25% उपर गई है 2015 तों। यह गल मनण वाली है क्योंकि जिथे होर चीज़ां गई उपर यह भी गई होनी है, और नाल दी नाल जिहड़ी पे आ 2015 तों लैके हुण तक वह भी उपर गई होनी है। जाने आने स्टे ट्यून, जोक भी सुनाउणा।
1: विजन वैनिटीज ते न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स ते भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज ते सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800, 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन?
1: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच तुहानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 9052308800।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज़ वी केयर।
0: Are you ready? इक्का जंक्शन ले 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इनारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040, 647-429-4040।
6: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
7: From the Dave Tatla News Desk, locally covered, nationally connected.
0: जो अपने एयरपोर्ट ते लगेज गुम हो जाए, 2-4 दिन लग जाते, 5-6 दिन लग जाते, लभ जाता तो वह फोन करते आप जाके ले आने। इसे तरह एक बिल्ली गुआच गई टोरंटो पीयरसन एयरपोर्ट से, 2 वीकां बाद लभी, लभ के हुण उन्होंने मोन्ट्रियल जिहड़े उहदे ओनर आ उन्हां कोले भेजा गया। एक बिल्डिंग कलैप्स हुई हिंदुस्तान दे विच, एक बंदे की मौत, सैकड़े दस्सिया जा रहा कि जिहड़े उत्थे फसे हुए ने। इंडोनेशिया वेलकैनो ज्वालामुखी फटिया और ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਕ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ
2: ਜਨਵਨ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾਏਂਗੀ ਦੱਸ?
8: ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ।
2: ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੈਲੋ ਵੇਟਰ। ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ।
8: ਓਹੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ।
2: ਹੈ
9: ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ।
10: ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਵੈਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਫੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ।
11: ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਵੇਟ ਟੇਕ ਗੋ ਰੂਟ 9057944667।
12: ਲੁਧਿਆਣਿਓ ਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆਂਦਾ।
13: ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਟੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
14: ਜਸ਼ਨ ਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ।
13: ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ,
14: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਕਾ,
13: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਗੇ ਫਰੇਮ ਟੈਂਟਸ, ਹਾਈ ਪੀਕ ਟੈਂਟਸ, ਫਲੇਅਰ ਟੌਪ ਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪੌਪ ਅਪ ਟੈਂਟਸ।
14: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਟੇਬਲਸ, ਚੇਅਰਸ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ।
13: ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸ਼ਨ 416-294-2857
14: 416-294-2857।
13: ਜਸ਼ਨ ਟੈਂਟਸ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕ।
0: ਮੋਰਗੇਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਬੀ ਸੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਏ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਲ 905-460-9099।

0: Quality service, vadiya rates, the best dealing hai unadi pehchan. India, Pakistan ya duniya de kise bhi kone ch karna hoye travel.
1: Serving Canada nationwide.
0: 905-671-8400 or 905-796-8800 or visit giltravels.ca.
2: हर कोई चाहता है कि ओदा घर सब तो सोना दिखे ते जे तुसी भी यही चाहते हो तो मिलो ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग कंपनी लिमिटेड वालियां नू जे अपने घर दे बैकयार्ड नू बनाना चाहते हो होर भी खूबसूरत या फिर करवाना चाहते हो लैंडस्केपिंग या इंटरलॉकिंग सारा काम टॉप दा करांगे अते सब तो बेस्ट रेट्स भी देंगे ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग कॉल 647-784-1213 6477841213

0: जी हाँ, इस समय देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो ने ऑन कर चुके हो। सब तो पहला तेजेंद्र सिंह सिद्धू सिद्ध मबाले वालों सारे अगर स्वागत। तो हूँ तो लैके ठीक शाम के 6 बजे तक अपनी मुलाकात है। सब तो पहला सारे ही स्रोतियां जी हाँ, अज के प्रांत मंगलवार का दिन है तो अज हो गई है सितंबर महीने की 8 तारीख जी।
1: जी नाल साथ दे रही है मैं मनप्रीत कौर तूर, मेरे वालों भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल ते बहुत बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे ते इंजॉय कर रहे हो बहुत ही खूबसूरत दिनां नूं ते तुहाडा ते साडा साथ एवरीडे दी तरह 3 घंटे तक हो चुका है ते 3:06 ते कुछ सैकेंड हो गए ने स्टूडियो की घड़ी के उपर इस समय ब्रैम्पटन दे विच ते तुहाडा ते साडा साथ पूरे 6 बजे तक है। स्टूडियो नंबर 905-564-5444 905-564-6444 दे उपर तुसी नाल गलबात कर सकते हो, अपनी पसंद का कोई भी गाना प्रोग्राम च सुन सकते हो ते किसी भी स्पॉन्सर दे बारे दी जानकारी लैनी है साडे नाल तुसी इसे नंबर ते गलबात कर सकते हो।
0: लो फिर सब तो पहला अज के प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं शब्द नाल ते उस तो फौरन बाद असी वापस आ रहे हैं जिने लो फंडा रेडियो प्रोग्राम।
2: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते

आसमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Wilk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮਾਦਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮ ਬੰਸਰਾ ਡਾਂਸ.
6: ਟੋਰਾਂਟੋ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੀਅਲਟਰ ਰਾਵ ਸਿੰਘ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸੈਂਸ.

0: क्या बात है जी, 5480 हेलो।
1: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, की हाल है?
0: वधिया सर।
1: सर एक नंबर लेना थोड़ा, फिर तो करो, विंडोज बनांदे आगे उन्हें दी ऐड आंदी जी अपने इथे।
0: विंडो वाले दा नंबर लिख लो जी।
1: हाँ जी
0: 647।
1: हाँ जी
0: 926।
1: हाँ जी
0: 0047।
1: थैंक यू वेरी मच सर। एक इथे
0: जिथे तुसी कहोगे भाजी पहुंचदे कर देंगे।
1: थैंक यू वेरी मच सर।
0: नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड कोई भी नंबर लेने होंदे आ जी सदके, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। एक तां साडा इंस्टाग्राम पेज है पंजाबी लहरा, उत्ते मैसेज कर दिया करो जे कोई नंबर चाहिए, या सानू तुसी आराम नाल फोन घुमा लिया करो, तो असी बिल्कुल थोड़े लिए हाजिर है। ओके, अपने ना व्याहां ते बहुत बार खाना पीना चलो वेस्ट होंदा। एक बंदा वो किसी व्याह ते गया, ते वो ना नाल कंटेनर लै गया, कंटेनर लै गया, तो उन्हें चलो जी कंटेनर दे विच खाना सीगा पाके घरे लै गया। तो बड़े लोगों ने उस चीज़ नू कितना किते क्रिटिसाइज किया कि यार तू व्याह ते आया तो तू खाना लैके जा रहा घरे, कि चंगा लगता जिन्ना खाना उत्थे खा, इहदा मतलब इह थोड़ा भी तैनू किसी ने सद लिया तो तू डब्बा भर के या कंटेनर भर के घरे लैके जा। कई लोग फिर भी चलो कहिंदे यार फिर की हो गया, जे जिहदा जिहड़ी फैमिली दा विआह सी उन्होंने नहीं माइंड किया तो फिर थोनू की है, नाले खाना वेस्ट होंदा। वेस्ट होण तो वधिया कि तुसी चलो एटलीस्ट खाना जड़ा वो डब्बिया च पा लो, ना लै जो फिर की हो गया। सो थोड़ा की ख्याल है, इंज खाना डब्बे च पा के घरे लैके जाना, डज इट लुक बैड, या थोनों कोई इस चीज़ नाल कोई गलत नहीं लगता? नंबर है अपना 905-673-3337 अपना नंबर है 905-673-3337। कॉल कर रहे हो होल्ड ते रहो, थोड़ी कॉल ऑटोमैटिक होल्ड ते पाई जाऊगी, ते वापस आके थोड़ी कॉल्स लेने हैं। नंबर है 905-673-3337। देखते हैं जे कोई थोड़े व्याह ते आके इंज करे तुसी माइंड करोगे? जे थोनू किसी ने सद्या तुसी कदे ऐ कीता नाल कंटेनर लै के भी चलो जी साढ़े अगले हफ्ते का लंच पैक हो जूगा, डिनर पैक हो जूगा, थोड़ी कुछ कॉल्स मैं जरूर लेना चाहवांगा। विल बी बैक।